0: छुप छुप के चाहत का सौदा करते हो, तुम ही सोचो ये कैसी मजबूरी है, मुझ में रह के मुझसे पर्दा करते हो
1: तुम।

पराई रस्म की जंजीर तोड़कर आजा, पराई रस्म की जंजीर तोड़कर आजा, मेरे लिए तू जमाने को छोड़कर आजा।

पतझड़ की रुत से क्या पगले, सावन की बरसात का रोना। पतझड़ की रुत से क्या पगले, सावन की बरसात का रोना। जब देखो दीवानापन में दिन का रोना रात का रोना। जो निर्मोही प्यार न जाने, प्यार में उसके ओ दीवाने। जिससे देखो रो देते हो, अशकों की बारात का रोना। रूठ के जाने वाला मितवा, लौट के एक दिन खुद आएगा। रूठ के जाने वाला मितवा, लौट के एक दिन खुद आएगा। छोड़ो भी ये नीर बहाना, भूली बिसरी बात का रोना।

0: को एकमात्र डीटीएच सेवा डिश हो,
1: डिश हो खुशी को कनेक्शन।
2: दात को सामान्य उपचार देखि जटिल दंत उपचार सम्म अब एउटै विश्वासिलो गंतव्य डर्माडेंट नेपाल हेयर ट्रांसप्लांट स्किन एंड एस्थेटिक डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर।
3: डर्माडेंट मा उपलब्ध छ सम्पूर्ण दंत उपचार सेवा, नियमित दात जांच, स्केलिंग तथा पॉलिशिंग, फिलिंग, रूट कैनल, दात निकाल्ने, डेन्टल इम्प्लान्ट देखि आकर्षक मुस्कान का लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपचार अनुभवी दन्त चिकित्सकबाट।
2: दात सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी का लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस्
3: डर्माडेन्ट नेपाल हेयर ट्रान्सप्लान्ट स्किन एन्ड एस्थेटिक डेन्टल क्लिनिक एन्ड इम्प्लान्ट सेन्टर, पाटन हस्पिटल रोड, लगनखेल। सम्पर्क 01-5454-66, व्हाट्सएप 98-65-44-24-96।
4: उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन, उज्यालो अनलाइन तथा उज्यालोको युट्युब र फेसबुकमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि